मंच को सुशोभित कर रहे विश्व के सबसे लोकप्रिय राजनेता, जिन्होंने योग को पूरे विश्व में लोकप्रिय बनाया, ऐसे हमारे परम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के महामहिम राज्यपाल श्री आर्यन रवि जी, पश्चिम बंगाल के ओजस्वी एवं लोकप्रिय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, आदरणीय सम्मानित अतिथिगण, उपस्थित गणमान्य जन, योग प्रेमियों, मीडिया के मित्रों एवं

0: लाइव टेलीकास्ट के द्वारा हमारे साथ पूरे दुनिया से जुड़े हुए करोड़ों देवियों और सज्जनों, आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी को 12वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में प्रस्ताव पारित करवाकर अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का जो अभूतपूर्व कार्य शुरू किया, वह अब 180 से अधिक देशों में मनाए जाने वाला एक वैश्विक स्वास्थ्य जन आंदोलन बन गया है। इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के संस्करण की थीम योग फॉर हेल्दी एजिंग है, जिसमें हमने योग 365 जैसा एक अनोखा अभियान शुरू किया है, जिसमें नागरिकों के लिए योग केवल एक दिन का उत्सव न रहकर योग को पूरे वर्ष अपने दिनचर्या का हिस्सा बनाने को प्रेरित करता है। इस वर्ष के योग दिवस के सेलिब्रेशन के लिए आयुष मंत्रालय ने काफी नए इनिशिएटिव लिए हैं, जिसमें हमने YouTube पर योग लाइव स्ट्रीम करके सबसे अधिक लोगों की सहभागिता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया। हवाई यात्रा में योग के लिए एक नया प्रोटोकॉल विकसित किया गया। 13 जून से 20 जून तक माँ गंगा के तट पर गंगोत्री से गंगा सागर तक 8 अलग अलग घाटों पर योगाभ्यास करके योग श्रृंखला का आयोजन किया गया। कोलकाता में दौड़ से ध्यान का कार्यक्रम आयोजित किया गया और कोलकाता में ही ड्रोन और लाइट शो का भी भव्य आयोजन किया गया। आज बहुत समय के बाद बंगाल की इस धरती से योग की गूंज पूरे विश्व भर में सुनाई दे रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में हमारा आयुष मंत्रालय भारत की प्राचीन विरासत वाली पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का विस्तार करने के लिए कटिबद्ध है। इसके लिए इस वर्ष के केंद्रीय बजट में आयुष मंत्रालय को लेकर कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की है, जिसमें 3 नए अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थानों की घोषणा भी शामिल है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं। मैं विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि जिन्होंने इस वर्ष के योग दिवस के अभूतपूर्व आयोजन के लिए अपने नेतृत्व में प्रशासन के साथ अपना पूरा योगदान दिया। अंत में मैं यह विश्वास व्यक्त करता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के ओजस्वी व्यक्तित्व और उनके गतिशील नेतृत्व में योग और आयुष की पताका पूरी दुनिया में लहराएगा तथा भारत को विश्व गुरु बनाने में योग और आयुष की महत्वपूर्ण भूमिका भी सिद्ध हो सकेंगी। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत बधाई। वंदे मातरम, जय हिंद, वंदे योग।
1: আয়ুষ মন্ত্রকের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী এবং স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রকের প্রতিমন্ত্রী শ্রী প্রতাপ রাও যাদব, তার বক্তব্য শুনলাম। এই মুহূর্তে মঞ্চে উপবিষ্ট রয়েছেন মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী আর এন রবিজি, উপস্থিত রয়েছেন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী শুভেন্দু অধিকারী মহাশয়, উপস্থিত রয়েছেন অবশ্যই ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীজি। রেড রোডে আয়োজিত এই অনুষ্ঠান এই মুহূর্তে সরাসরি
2: ভারত মাতা কি, ভারত মাতা কি, বন্দে। সমবেত সুনাগরিক ভদ্রমণ্ডলী, আমাদের মধ্যে উপবিষ্ট হয়েছেন বিশ্বের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী, এবং যার হাত ধরে সিটি অফ জয় এই

0: Oh, my privilege and profound honor to invite the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, to kindly address the nation and the world on the occasion of International Day of Yoga 2026. ये मेरा परम सौभाग्य और अत्यंत सम्मान का विषय है कि भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से विनम्र अनुरोध करूं कि वे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2026 के अवसर पर राष्ट्र एवं विश्व समुदाय को संबोधित करें।
1: मंच पर विराजमान राज्यपाल श्री आर एन रवि जी, ऊर्जावान मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी जी, केंद्र में मेरे सहयोगी प्रताप राव यादव जी, अन्य सभी महानुभाव, यह कोलकाता में जुटे सभी प्रतिभागी, देश विदेश में योग से जुड़ रहे सभी साथी और मेरे प्यारे देशवासियों, 21 जून का ये दिन पृथ्वी के कुछ भूभाग पर साल में सबसे लंबी अवधि का दिन होता है और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के कारण 21 जून का ये दिन विश्व के सबसे बड़े सामूहिक उत्सव का दिन भी बन गया है। विश्व के अलग अलग हिस्सों से योग की एक से एक अद्भुत तस्वीरें आ रही हैं। भारत में हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक, पूर्वोत्तर और पूरब में बंगाल से लेकर पश्चिम में सौराष्ट्र तक, पूरा देश योग की ऊर्जा से, चैतन्य से भरा हुआ नजर आ रहा है। पूरा देश, पूरा विश्व एक दूसरे से जुड़ा हुआ नजर आ रहा है और यही तो योग की ताकत है। योग सबको जोड़ता है, योग सबको साथ लाता है। मैं इस अवसर पर पूरे विश्व को, संपूर्ण मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। साथियों, आज योग दिवस पर मैं खास करके पूरे बंगाल में, कोलकाता में, यहां बने स्वच्छता के योग के लिए भी कोलकाता वासियों की सराहना करूंगा। ये अद्भुत पहल है, स्वच्छता से स्वागत। स्वच्छता से स्वागत पहल के लिए जिस तरह यहां लगातार श्रम किया गया है, नागरिक कर्तव्य निभाया गया है, वो सभी देशवासियों के लिए आज एक बहुत बड़ी प्रेरणा बन गया है। साथियों, योग दिवस के अवसर पर आज बंगाल में होना बहुत ही विशेष है। बंगाल की ये पवित्र भूमि, जहां भगवान रामकृष्ण परमहंस जैसे सिद्ध संतों ने अवतार लिया, जहां से निकलकर स्वामी विवेकानंद ने पूरे विश्व को योग से परिचय कराया, जहां महर्षि अरविंद जैसे महान योगी ने जन्म लिया, लाहिड़ी महाशय जैसे महान योगियों ने जहां योग परंपरा को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया, आज उसी धरती पर सामूहिक योग का अनुभव एक अलग आध्यात्मिक अनुभूति दे रहा है। इसी बंगाल की धरती

अलग अलग रहने में नहीं बल्कि अपने आसपास की दुनिया से जुड़ने में है। यही जुड़ाव योग का मूल भाव है। महर्षि अरविंद भी कहते थे, हमारा पूरा जीवन योग है, चाहे हमें इसका बोध हो या ना हो। योग जब स्वभाव में आता है तो वो मानवीय एकता का आधार बन जाता है। साथियों, योग केवल शारीरिक श्रम का साधन नहीं है। योग किसी एक आयु वर्ग के लिए सीमित भी नहीं है। भारत में हम जानते हैं और देखते आए हैं, योग मानव के जीवन का चेतना के साथ, ऊर्जा के साथ एक प्रकाश भी है। इसलिए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम रखी गई है, योगा फॉर हेल्दी एजिंग। उम्र बढ़ने पर भी हम स्वस्थ रह सकते हैं, हम ऊर्जावान और सक्रिय रह सकते हैं। योग हमें इसके लिए मार्ग दिखाता है। फ्रेंड्स, व्हेन वी स्पीक ऑफ योगा फॉर हेल्दी एजिंग, इट मींस दैट वी कैन वर्क टू एंश्योर दैट एज डज नॉट रिड्यूस ह्यूमन पोटेंशियल। योग कैन हेल्प ह्यूमन लाइफ टू एस्पायर फॉर कॉन्स्टेंट ग्रोथ। आवर टारगेट मस्ट बी टू बी मोर फ्लेक्सिबल एट 40 देन वी वेर एट 20। आवर टारगेट मस्ट बी to be more energetic at 50 than we were at 30. Our target must be to be more resistant to lifestyle disease at 70 than we were at 50. This is where योगा कैन हेल्प अस। इट हेल्प्स अस ट्यून अवर बॉडीज टू बी फ्लेक्सिबल। इट कीप्स अवर एनर्जी लेवल हाई। इट ऑल्सो हेल्प्स अस मेंटेन अ काम स्ट्रेस फ्री लाइफ एंड हेल्प टू कीप लाइफस्टाइल डिजीज अवे। मोर ओवर, विथ रेगुलर प्रैक्टिस योगा टीचिज अस टू रिमेन लाइफ लॉन्ग लर्नर ऑफ अवर ओन बॉडीज एंड माइंड्स। The more we know about ourselves, the better we can manage ourselves. That is why yoga for healthy aging, this theme must be seen as one for people of all ages, not just for the elderly. साथियों, गीता में भगवान कृष्ण ने योग के विषय में कहा है,
युक्त आ

आहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्न अवबोधस्य योगो भवति दुखः। अर्थात संतुलित आहार विहार से, संतुलित क्रिया और कर्मों से, संतुलित नींद और जागने से योग दुखों का नाश करने वाला हो जाता है। ये संतुलन ही योग का आधार है। यही संतुलन हमारे जीवन का आधार भी है। लेकिन ज्यादातर लोग आज इस आधुनिक समय में जीवन के असंतुलन से ही जूझ रहे हैं। बहुत मशक्कत करनी पड़ रही है उनको। योग हमें जीवन को बैलेंस वे में जीने की कला सिखाता है। योग हमें डू और डोंट सिखाता है। और जब हम हमारे शरीर को सही ढंग से चलाना सीख लेते हैं तो स्वास्थ्य हमारा स्वभाव बन जाता है। साथियों, योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता। योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है। इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है। यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध, ये बोध हमारे जीवन में शांति का स्रोत तो बनता ही है। इससे विश्व शांति का मार्ग भी खुलता है। इसलिए योग आज केवल हमारी पर्सनल लाइफस्टाइल के लिए जरूरी है इतना ही नहीं है। योग दुनिया के बेहतर भविष्य के लिए एक आवश्यकता भी है। साथियों, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करोड़ों लोग योग से जुड़ते हैं। लेकिन आज का ये दिन हमें अपने साझा संकल्प को फिर दोहराने का अवसर देता है। आइए हम संकल्प लें योग को केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रखेंगे। योग को केवल एक कार्यक्रम तक सीमित नहीं रखेंगे। हम योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे, अपने परिवार का हिस्सा बनाएंगे, अपनी आने वाली पीढ़ियों का हिस्सा बनाएंगे। साथियों, इसी दिशा में इस वर्ष योग 365, योग 365 की पहल को भी आगे बढ़ाया गया है। इसके तहत 100 दिन के ऑनलाइन योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें अभूतपूर्व जनभागीदारी देखी गई है। 130 देशों के 30 लाख से अधिक लोगों ने इसमें भाग लिया है। साथियों, जब समाज स्वस्थ होगा तब राष्ट्र भी अधिक सक्षम, अधिक समृद्ध और आत्मविश्वासी बनेगा। मैं इसके लिए मैं सबके लिए
कामना कर

0: धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए,
1: आस्ते आस्ते दोनों चोख के खुलून,
0: दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: दोनों हाथ के स्वाभाविक अवस्था ले आसुन,
0: जिस स्थान पर आप बैठे उस स्थान पे खड़े हो जाइए,
1: निजर जाएगा दाड़िये पोड़ून।
0: हम सब आज का सत्र चालन क्रिया से शुरू करेंगे।
1: आज के हमारा चालन क्रिया माध्यम अधिवेशन शुरू कर दो,
0: जिसे सूक्ष्म व्यायाम शीतलीकरण व्यायाम का नाम से भी बोला जाता है। यहाँ चालन क्रिया अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है, उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन शुरू उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम हम चालन क्रिया से शुरू करेंगे, गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे।
1: घर सामने पीछे नहीं घोड़ा,
0: दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखे,
1: दुटो पायर माच करने 2 इंची दूर तो बजाय रखो,
0: दोनों हाथों को कमर पर रखिए,
1: दुटो हाथ के कोमड़े ऊपर रखो।
0: पहला अभ्यास गर्दन को आगे और पीछे झुकाने का अभ्यास।
1: प्रथम अभ्यास घर सामने एवं पीछे झुकाना,
0: श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर और गर्दन को आगे की ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा एवं घर के सामने दिखे झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए,
1: सांस नीते नीते पीछे दिखे माथा झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: सांस नीते नीते स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे।
1: यही अभ्यास पुनरावृत्ति करून,
0: पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है, गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास गर्दन को दाएं और बाएं झुकाने के अभ्यास, राइट एंड लेफ्ट झुकाने का अभ्यास।
1: परवर्ती अभ्यास दाने एवं बामे कात कोड़ार,
0: श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को राइट साइड दाई के और झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा डांडी के कात कोड़ान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे,
1: बाम दिख थे अनुशीलन टी अभ्यास करून,
0: पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है, और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला क्रिया गर्दन को दाएं और बाएं मोड़ने का अभ्यास,
1: घर डाने एवं बामे घुरान और अभ्यास,
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए, राइट साइड मोड़िए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते अपना घर डान दे के घुरान,
0: और श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में आइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: पुनः इसका अभ्यास लेफ्ट साइड से करेंगे।
1: यही अभ्यास
0: श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए, और श्वास भरते हुए इस प्रक्रिया को कीजिए। इसका अभ्यास एक और बार करेंगे, पूरा ध्यान श्वास पर श्वास पर, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अगला अभ्यास गर्दन को घुमाने का,
1: परवर्ती अभ्यास घर घोड़ान,
0: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को आगे की ओर झुकाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते माथा सामने दिखे झुकान,
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर को क्लॉकवाइज डायरेक्शन ऊपर की तरफ घुमाएंगे,
1: सांस नीते नीते घोड़ी कांटार दिखे घूर्णन दिन,
0: और श्वास छोड़ते हुए सिर को पुनः आगे लेके आइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते सामने दिखे न्यास।
0: एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। इस प्रक्रिया में आंखें खुली रखना है, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम इसका विपरीत दिशा में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन करेंगे, धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए गर्दन को एंटी क्लॉकवाइज ऊपर लेके जाइए, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को नीचे। एक और बार
1: विपरीत दिशा के वे अनुशीलन की अभ्यास करून,
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे आइए, और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। आप दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके जाइए, और सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए,
1: सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम स्कंद चालन का अभ्यास करेंगे, कांध एवं बाहुर आंदोलन, जिसे भी कंधों में दर्द है, फ्रोजन शोल्डर है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति इसका अभ्यास सावधानी के साथ करना है। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथों को साइड से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए।
1: सांस नीते नीते दोनों हाथ के ऊपर नी आसुन,
0: दोनों हाथों को हथेलिया बाहर की तरफ रहना है,
1: दोनों हाथेर तालू बाहर दिखे।
0: इस अवस्था में थोड़ी देर रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए,
1: स्वाभाविक अवस्था है, फिर आसुन।
0: एक और बार इसका अभ्यास करेंगे पूर्ण श्वास प्रश्वास पर। धीरे धीरे श्वास लेते हुए दोनों हाथों को बगल में से ऊपर की ओर लेके जाइए हथेलिया का, और मुख बाहर की तरफ रहना है, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते सामान्य अवस्था फिर आसुन।
0: अब हम स्कंद चक्र का अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे दोनों हाथों को बगल में से कंधों के बराबर लेके आइए।
1: आस्ते आस्ते दोनों कांध के

0: हथेली सामने
1: और हथेलियों को मोड़कर कंधों पर रखिए।
0: दोनों कोनों के भाज करुन,
1: दोनों कोनी को छाती के सामने लेके आइए।
0: दोनों कोनों के छाती के सामने नियासुन
1: और धीरे धीरे कोनी को ऊपर से नीचे की ओर गोलाकार डायरेक्शन में घुमाइए,
0: श्वास प्रश्वास के साथ
1: धीरे धीरे गोलाकार आकृति तक घोड़ान।
0: पूरा ध्यान कंधों पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस कीजिए। एक और बार इसका अभ्यास करें।
1: अब हम इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन।
0: पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर, श्वास लेते हुए कोनी को ऊपर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे,
1: और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए और पुनः सामान्य स्थिति में विश्राम कीजिए।
0: सामान्य अवस्था ही फिर आसन।
1: अगला अभ्यास कटी चालन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को कंधों के समानांतर लेकर आइए।
0: दोनों पैर माझखाने कांधे समान दूरत्व बजाय रखून।
1: दोनों हाथों को सामने से ऊपर लेके आइए कंधों के समानांतर।
0: दोनों हाथ के कांधे समान सामने,
1: हथेलियों को मुख अंदर की तरफ रहे,
0: हाथेर दोनों तालु सामने दिखे।
1: धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दाएं तरफ राइट साइड कमर से घुमाइए।
0: सांस छाड़ते छाड़ते शरीर के दान दिखे घोड़ान।
1: इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए।
0: सांस छाड़ते छाड़ते स्वाभाविक अवस्था
1: फिर इसका अभ्यास विपरीत दिशा में भी करेंगे।
0: विपरीत दिशा से क्यों अपनी अभ्यास करूं।
1: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए।
0: एक और बार इसका अभ्यास।
1: दाई तरफ धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और धीरे धीरे श्वास लेते हुए लेफ्ट साइड घूमेंगे और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सामान्य स्थिति में, और दोनों हाथों को सामान्य अवस्था में लेके आइए।
0: सामान्य अवस्था ही फिर आसुन।
1: अब हम घुटना चालन क्रिया का अभ्यास करेंगे।
0: परवर्ती अभ्यास हाटूर संचालन।
1: श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सामने से कंधों के समानांतर लेके आइए।
0: सांस नीते नीते हाथ के छाती सामने नहीं आसुन।
1: हथेली का रुख नीचे की ओर रहना है,
0: हाथेर तालु नीचे दिखे।
1: श्वास छोड़ते हुए घुटने से मोड़िए।
0: सांस छाड़ते छाड़ते दोनों हाथों के भाज कोड़ून।
1: कुर्सी के ऊपर बैठे की स्थिति में आना है और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास लेते हुए पुनः खड़े हो जाइए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर और धीरे धीरे श्वास भरते हुए खड़े हो जाइए।
0: स्वाभाविक अवस्था फिर आसो
1: और धीरे धीरे सामान्य स्थिति में आइए। अब हम योगासनों का अभ्यास शुरू करेंगे।
0: एक बार हमारा आसन अभ्यास शुरू कर दो।
1: पहला अभ्यास ताड़ासन।
0: प्रथम अभ्यास ताड़ासन।
1: दोनों पैरों के बीच में 2 इंची की दूरी बना के रखे।
0: दोनों पैर माझखाने 2 इंची दूरत्व बजाय रखो।
1: दोनों हाथों को कंधों के बराबर आगे से समानांतर लेके आइए।
0: दोनों हाथ के छाती के सामने कांधे समान नहीं आसुन।
1: दोनों हाथों की उंगलियों को आपस में फंसाइए।
0: दोनों हाथ के जोड़ों को
1: और हथेलियों को बाहर की तरफ घुमाइए।
0: बाहर दिखे घूरिए दिन हथेर तालू।
1: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सिर के ऊपर लेके जाइए।
0: सांस नीते नीते हाथों को रेर दिखे।
1: हो सके तो एड़ियों को उठाने का प्रयास,
0: संभव होले गोड़ाली रोपोट
1: संतुलन बनाने का प्रयास। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की तरफ लेके आइए।
0: सांस छाड़ते छाड़ते हाथ नीचे
1: और सामान्य स्थिति में आ जाइए और विश्राम कीजिए,
0: आराम करून।
1: अगला अभ्यास पादहस्तासन का अभ्यास करेंगे।
0: परवर्ती अभ्यास पादहस्तासन।
1: जिसे भी हाइपर बीपी है, हर्निया है, हाइपर गैस्ट्राइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों के बीच में 4 इंची का दूरी बना के रखिए।
0: दोनों पैर माझखाने 4 इंची दूरत्व बचाए दिन।
1: दोनों हाथों को श्वास भरते हुए सामने से सिर के ऊपर उठाइए।
0: दोनों हाथ के सामने थे के माथा रोपुर निये जान।
1: और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कमर से आगे की ओर झुकाइए।
0: सांस छाड़ते छाड़ते कोमर थे के झोंकान।
1: दोनों हाथों को दोनों पैरों के पंजे के पास रखने का प्रयास।
0: दोनों हाथ के पैर पास स्थापित करूं
1: और दोनों घुटने को सीधा रखने का प्रयास।
0: दोनों हाथों के सोजा करने प्रयास करूं।
1: इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ रहिए और धीरे धीरे

0: श्वास भरते हुए हाथों को ऊपर की ओर लेके आइए,
1: सांस लेते लेते फिर आसुन
0: और श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को नीचे की ओर लेके आइए और विश्राम कीजिए,
1: आराम करो।
0: अगला अभ्यास अर्ध चक्रासन,
1: परवर्ती अभ्यास अर्ध चक्रासन।
0: दोनों हाथों को कमर पर रखिए,
1: दोनों हाथ के कोमरेर ऊपर रखून
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की तरफ लेके जाइए,
1: धीरे धीरे अपनर बॉडी के पिछन दिखे झोंकान।
0: इसका अभ्यास करते समय आंखें खुली रखना है,
1: ये अनुशीलन समय चोख दुटो खोला थाकबे
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः सामान्य स्थिति में आइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते स्वाभाविक अवस्था फिर आसुन
0: और दोनों हाथों को नीचे की तरफ लीजिए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास त्रिकोणासन का करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास त्रिकोणासन।
0: दोनों पैरों के बीच में 3 या 4 फीट का अंतर बनाए रखिए,
1: दोनों पैर माझखाने 3 से 4 फीट दूरत्व बजाय रखो।
0: दोनों हाथों को बगल में से कंधों को समानांतर लेके आइए,
1: दोनों हाथ के कांधे समांतराल ले आसुन।
0: दाएं पैर को दाएं तरफ, राइट लेग को राइट साइड घुमाइए,
1: डान पैर पाता डान दे के घुड़िए दिन
0: और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए,
1: सांस छाड़ते छाड़ते शरीर के डान दे के झुकिए दिन।
0: राइट हैंड दाएं पैर पे पीछे की तरफ या टखनों पे स्थापित करे,
1: अपना डान हाथ पैर का स्थापित करो
0: और सिर को ऊपर के आसमान की तरफ रखिए, देखिए और थोड़ी देर इस अवस्था में रहिए,
1: विशाल का आकाशेर दिखे देखार चेष्टा करुन एवं ये अवस्थाएं बजाय थाकुन
0: और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए,
1: स्वाभाविक अवस्थाएं फिर आसुन।
0: राइट लेग को सीधा कीजिए, इस तरह दूसरे पैरों से भी अभ्यास करेंगे, लेफ्ट लेग को लेफ्ट की तरफ घुमाइए, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे शरीर को लेफ्ट साइड झुकाते जाइए, बाएं लेफ्ट का बाएं पैर पे रहना है और सिर को ऊपर की तरफ कीजिए और इस अवस्था में सामान्य स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए श्वास प्रश्वास के साथ और धीरे धीरे श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आइए, पैर को सीधा कीजिए और हाथों को नीचे लेके सामान्य स्थिति में खड़े हो जाइए,
1: स्वाभाविक अवस्था फिर आसन।
0: अब हम बैठ कर करने वाले आसनों का अभ्यास करेंगे,
1: এবার আমরা বসে করা আসনগুলোর অভ্যাস করব,
0: ধীরে ধীরে সে বেঠ যাইয়ে
1: নিজের জায়গায় বসে পড়ুন,
0: পেরোং কো সামনে কি তরফ সিধা কিজিয়ে,
1: দুটো পাকে সামনের দিকে সোজা করুন,
0: দোনো হাতো কো নিতম্ব কে পাস সহজতা সে রাখিয়ে,
1: দুটো হাত কে নিতম্বের পাশে রাখুন,
0: কমর গর্দন সিধা রাখে,
1: কোমর এবং ঘাড় সোজা রাখুন।
0: ইসকো হাম দণ্ডাসন কেহতে হে,
1: একে দণ্ডাসন বলা হয়।
0: अब दंडासन के पश्चात हम आगे भद्रासन का अभ्यास करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास भद्रासन।
0: जिसको भी घुटने में दर्द है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, घुटने का सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दंडासन की स्थिति में दोनों पैरों को एक साथ मोड़िए और दोनों तलवों को मिलाइए,
1: दुटो पायर पाता के एक संग जोड़ो करुन
0: और पंजों को दोनों हाथों से पकड़िए,
1: पैर आंगुल गुलो के हाथ दिए धरार चेष्टा करो,
0: एड़ियों को धीरे धीरे शरीर की तरफ खींचिए,
1: गोराली के निजे नितंबर काछे नियासर चेष्टा करो
0: और घुटने को जमीन पर स्थापित करने का प्रयास,
1: हाटू मेजर दिखे,
0: सिर गर्दन सीधा रखे और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बनी रहिए और धीरे धीरे दोनों हाथों को छोड़िए, पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और दंडासन में आइए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए, दोनों हाथों को पीछे की तरफ लेके जाइए,
1: दोनों हाथ के पिछोनर दिखे निये जान
0: और दोनों पैरों के बीच में 1 फीट का अंतर रखिए,
1: दोनों पैर माझखाने 1 फीट दूरत्व बजाय रखून,
0: गर्दन को एक तरफ दाएं या बाएं तरफ रखकर विश्राम कीजिए,
1: घर जेकोनो दिखे जेमन डान दिखे एवं बाम दिखे।
0: अगला अभ्यास वज्रासन का करेंगे,
1: परवर्ती अभ्यास वज्रासन।
0: जिसे भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस है, सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। अब हम

0: शीतल दंडासन से धीरे धीरे एक एक पैर को मोड़ते हुए नितंब के नीचे लेके आइए।
1: धीरे धीरे एकटा एकटा करे पा नितंबेर काछे भाज करूं।
0: एड़ियों को बार और घुटने मिले हुए रहना है।
1: हाटू जोरो थाकबे एवं गोड़ाली बाहरेर दिके।
0: दोनों हाथों को घुटनों पर स्थापित करें।
1: दोनों हाथ के हाटूर पर स्थापित करूं।
0: सामान्य श्वास प्रश्वास से थोड़ी देर इस अवस्था में बने रहिए।
1: स्वाभाविक सांस प्रोसेस बचाए रखूं
0: और धीरे धीरे आंखों को खोलिए। अब हम अर्ध उष्ट्रासन का अभ्यास करेंगे वज्रासन के साथ।
1: परवर्ती अभ्यास उष्ट्रासन।
0: वज्रासन की स्थिति से धीरे धीरे अपने घुटने पर खड़े हो जाइए।
1: हाटूर पर दाड़िए पड़ूं।
0: दोनों हाथों को कमर के पीछे रखिए।
1: दोनों हाथ के कोमड़े पीछे स्थापित करूं
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन और छाती को छाती के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ झुकाइए।
1: सांस नीते नीते शरीर के पीछे दिखे बाकान
0: और इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए।
1: स्वाभाविक सांस प्रश्वास बजाय रखूं
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन और छाती को सामान्य स्थिति में लेके आइए। पुनः वज्रासन में बैठ जाइए।
1: वज्रासन है बोसे पड़ूं।
0: अगला अभ्यास शशकासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास शशकासन।
0: वज्रासन की स्थिति से दोनों घुटनों को बाहर की तरफ खोलिए।
1: वज्रासन थे के दोनों हाथों के बाहर दिखे खुलून
0: और दोनों हाथों को हथेलियों को धरती पर स्थापित करें।
1: दोनों हाथ के फ्लोर पे स्थापित करूं
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए हथेलियों को सरकाते हुए शरीर को आगे की ओर झुकाइए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते दोनों हाथ के स्लाइड करते करते नीचे जा।
0: नितंब को एड़ियों पर टिकाने का प्रयास।
1: नितंब के गोड़ाली संगे रखार चेष्टा।
0: टोड़ी छाती को धरती पर स्थापित करें और सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को सरकाते हुए शरीर के पास लेके आइए और दोनों हाथों को घुटने पर स्थापित करें। अब हम यहीं से उत्तान मंडुकासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती आसन उत्तान मंडुकासन।
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए दोनों हाथों को साइड में से बगल से सिर के ऊपर लेके जाइए।
1: दोनों हाथ के साइड थे के ऊपर निये जान।
0: एक एक करके दाएं हाथ को मोड़ते हुए बाएं कंधों पर और बाएं हाथ को मोड़ते हुए दाएं कंधों पर स्थापित करें।
1: डान हाथ के भाज करे बाम कांधे एवं बाम हाथ के भाज करे डान कांधे रखूं।
0: सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाइए और बगल में से नीचे की तरफ लेके आइए और दोनों घुटनों को जोड़िए। पुनः वज्रासन में आइए और दोनों पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ कीजिए और शीतल दंडासन में विश्राम कीजिए।
1: दोनों पाके बाहर दिखे छोड़िए। शीतल दंडासन में विश्राम करूं।
0: अब हम वक्रासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास वक्रासन।
0: शीतल दंडासन से दंडासन में आइए और दोनों हाथों को नितंब के पास सिर गर्दन कमर सीधा रखें। अब धीरे से दाएं पैर को मोड़िए। दाएं पैर के घुटने के पास रखें।
1: डान हाथों के भाज करूं बाम पैर का छे।
0: दाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें।
1: डान हाथ के पीछे दिखे स्थापित करूं।
0: बाएं हाथ को दाएं घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पंजे के पास रखने का प्रयास या दाएं पंजों को पकड़ने का प्रयास।
1: बाम हाथ दिए उल्टपा धरार चेष्टा करूं
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर गर्दन को दाएं तरफ मोड़िए।
1: सांस छाड़ते छाड़ते घाट डान दिखे घोड़न
0: और स्थिति में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए।
1: स्वाभाविक सांस प्रश्वास के साथ यही अवस्था बजाय थकून
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सामान्य स्थिति में आइए और पैरों को आगे की तरफ कीजिए। इसका अभ्यास दूसरे पैरों से भी हम करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास उल्टो पाथ है।
0: बाएं पैर को मोड़ते हुए दाएं पैर के घुटने के पास स्थापित करें और बाएं हाथ को पीछे धरती पर स्थापित करें। दाएं हाथ को बाएं पैर के घुटने के ऊपर से घुमाते हुए दाएं पैर के पंजों को पकड़िए या टखनों पर पकड़िए और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पर, कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास और धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए और विश्राम कीजिए। अब हम पेट के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे।
1: एवं हमरा पेटेर ऊपर भर दिए आसन शुरू कर दो।
0: दंडासन की स्थिति से पेट के बल लेट जाइए।
1: दंडासन स्थिति थे के पेटेर ऊपर सुए पड़ो।
0: सिर आगे मंच की तरफ रहे,
1: माथा स्टेजर दिखे थक पे,
0: पैर पीछे की तरफ हो। दोनों पैरों के बीच में एक फुट का अंतर रखे।
1: दो पैर माझखाने एक फुट दूरत्व बजाय रखो।
0: दोनों एड़ियों को अंदर की ओर और पंजे बाहर की तरफ रहे। दोनों हाथों को मोड़ते हुए दाएं हथेलियों को बाएं हथेलियों पर स्थापित करें।
1: डान हाथ के बाम हथेलियों पर स्थापित करो।
0: बाएं या दाएं गाल को दाएं हाथ पर स्थापित करें।
1: डान एवं बाम गाल स्थापित करो हथेलियों पर।
0: इसको हम मकरासन कहते हैं।
1: मकरासन बोला है।
0: यहाँ आसन शरीर और मन को नियंत्रित करता है, शांति प्रदान करता है और एंग्जाइटी स्ट्रेस तनाव ऐसे बीमारियों को भी नियंत्रित करता है। अब हम यहीं से भुजंगासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अनुशीलन भुजंगासन।
0: मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए।
1: मकरासन थे के दुटो पाके एक संगे नियासन
0: और धीरे से श्वास भरते हुए दोनों हाथों को आगे की तरफ सीधे खींचे।
1: सांस नीते नीते सामने दिखे हाथ नियासन
0: और धीरे धीरे दोनों हाथों को छाती के पास लेके आइए।
1: दोनों हाथ के छाती सामने नियासन
0: और धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन छाती को ऊपर की आसमान की तरफ कीजिए।
1: सांस नीते नीते शरीर के बाकन और चेष्टा करो।
0: सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ स्थिति में थोड़ी देर बने रहिए।
1: ये अवस्था एक स्वाभाविक सांस प्रश्वास बजाय रखो।
0: यहाँ आसन पीठ कमर के दर्द में लाभदायक है और लंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, काशी जुकाम दमा जैसे व्याधियों को नियंत्रित करने में सक्षम है। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए नीचे की ओर आइए और सामान्य स्थिति में मकरासन में पुनः विश्राम कीजिए।
1: मकरासन विश्राम करून।
0: अब हम अगले आसन शलभासन का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती आसन शलभासन।
0: मकरासन से दोनों पैरों को मिलाइए।
1: मकरासन थे के दुटो पाके एक संगे नियासन।
0: दोनों हाथों को जांगों के पास लाइए।
1: दुटो हाथ के जांगेर पासे राखून
0: और दोनों हथेलियां जमीन पर जमीन की तरफ रखे। टोड़ी को जमीन से लगा कर रखे। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए।
1: सांस नीते नीते दुटो पाके ऊपर तुलार चेष्टा करो।
0: प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का।
1: प्रयास करून कि दुटो पा सोजा थाके
0: और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए। पुनः मकरासन में विश्राम कीजिए।
1: मकरासन में आराम करो।
0: अब हम सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे।
1: चित होए करा आसन अभ्यास करबो।
0: बाई या दाई तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए।
1: पीठे ऊपर सुए पड़ो।
0: पहला अभ्यास सेतु बंधासन ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए।
1: दोनों पाके एक संगे नियासन
0: और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए।
1: दोनों पाके भाज करते करते नितंबेर काछे नियासन।
0: दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास।
1: दोनों हाथ दिए गोड़ाली धरार चेष्टा करो।
0: श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास।
1: श्वास नीते नीते अपना शरीर दिए ब्रिजेर आकार दिन।
0: सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए और पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्थान पादासन।
1: परवर्ती अभ्यास उत्थान पादासन।
0: दोनों पैरों को मिलाइए,
1: दोनों पाके एक संगे नियासन।
0: हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए, हथेलियों को जमीन पर रखे। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45 डिग्री कोण बनाइए, उठाकर कोण बनाइए।
1: श्वास नीते नीते पायर द्वारा 45 डिग्री कोण दिन।
0: इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए,
1: स्वाभाविक श्वास प्रश्वास बजाय रखो
0: और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। अगला अभ्यासन अर्ध हलासन।
1: परवर्ती अभ्यास अर्ध हलासन।
0: दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री का कोण बनाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री का कोण बनाइए।
1: सांस नीते नीते 90 डिग्री कोण नियासन।
0: प्रयास करिए घुटने सीधा रहे,
1: चेष्टा करून अपना दोनों हाथों सोजा थाके
0: और सामान्य श्वास प्रश्वास और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम इसी अवस्था से पवन मुक्तासन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए,
1: दोनों हाथ के हमरा लॉक करबो दोनों पायर माझखाने।
0: श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने का प्रयास और टोड़ी को घुटने के बीच में रखने का प्रयास।
1: सांस छाड़ते छाड़ते चिबुक टिकाने की चेष्टा करबो
0: और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और हाथों को बगल में रखिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन यहाँ अजीर्ण कब्जी जैसे अवस्था को निवारण करता है और पीठ और पेट की चर्बी को भी घटाने में सक्षम है। अब हम पूरे विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला दूर रखिए, दोनों पैरों को दूर रखिए और हाथों को शरीर से बाहर रखिए।
1: दोनों पायर मध्य दूरत्व बजाय रखो एवं दोनों हाथों मध्य दूरत्व बजाय रखो।
0: हथेलियों को आसमान की ओर खुले रखें,
1: हाथेर तालू आकाशेर दिखे
0: और आंखों को सहजता से बंद कीजिए। गहरा लंबा श्वास लीजिए और धीरे धीरे गहरा लंबा श्वास बाहर छोड़िए। शरीर के प्रत्येक अंग प्रत्यंग पर ध्यान दीजिए, चंचल मन को निश्चल करने का प्रयास और पूरे शरीर को शिथिल करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रखे शरीर में उत्पन्न होने वाले सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। शरीर और मन में उत्पन्न हुए चिंता को दूर करने का प्रयास। अपने आप को धरती को समर्पण करने का प्रयास। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर। धीरे धीरे बाई या दाई करवट लेते हुए बैठ जाइए। धीरे धीरे दाई या बाई करवट लेते हुए मंच की तरफ देखते हुए बैठ जाइए। सिर और गर्दन को सीधा रखे शवासन से उत्पन्न हुए सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करने का प्रयास। अब हम

0: कपालभाति का अभ्यास करेंगे। पूर्ववर्ती अभ्यास कपालभाति, जिसे भी हाई बीपी है, हर्निया, कमर दर्द, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे अवस्था में सावधानी के साथ कपालभाति का अभ्यास करेंगे। किसी भी ध्यानात्मक आसन, सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन, किसी भी ध्यानात्मक आसन जो आपको सुख का अनुभूति देता हो, उस आसन में बैठ जाइए। सिर गर्दन सीधा रखें और दोनों हाथों को दोनों घुटनों पर स्थापित रखें।
1: जी कोनो ध्यान मुद्राएं बसुन, जेमन सुखासन, पद्मासन, सिद्धासन एवं वज्रासन, एवं दुटो चोख के आलतो करे बंद करुन।
0: पहला चक्र 20 आवृत्ति के लिए हम शुरुआत करेंगे। गहरा लंबा श्वास लीजिए और श्वास को छोड़ते हुए मांसपेशी को दबाते हुए श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए।

0: बस छोड़िए और शांति का अनुभव कीजिए। कपालाभाति का दूसरा चक्र हम शुरू करेंगे 20 आवृत्ति के लिए। गहरा लंबा श्वास अंदर लीजिए, श्वास छोड़ते हुए पेट की मांसपेशियों को संकुचित कीजिए। श्वास, गहरा श्वास, लंबा श्वास छोड़िए और विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास अनुलोम विलोम।
0: कमर गर्दन सीधा रखे, आंखें बंद रखे,
1: अपना कोमर एवं घाड़ सोजा रखें एवं चोख बंद रखें।
0: बाएं हाथ को ध्यान मुद्रा में बनाकर बाएं पैर पे रखिए।
1: बाम हाथ दिए ज्ञान मुद्रा बनिए, बाम हाटू ऊपर रखून
0: और दाएं हाथ से प्राणायाम मुद्रा करके
1: डान हाथ दिए प्राणायाम मुद्रा बनाने की चेष्टा करून।
0: धीरे से लेफ्ट नॉस्ट्रिल से दाएं नासिका रंध्र से धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ लीजिए और धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर छोड़िए। धीरे धीरे श्वास को राइट नॉस्ट्रिल से पुनः अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाहर छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेफ्ट नॉस्ट्रिल से धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और राइट नासिका रंध्र से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ और धीरे धीरे श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए और धीरे धीरे हाथ को नीचे की तरफ लेके आइए। और अब हम अगले अभ्यास शीतली प्राणायाम का अभ्यास करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास शीतली प्राणायाम।
0: दोनों हाथों से ज्ञान मुद्रा धारण करके घुटने पर स्थापित करें।
1: दोनों हाथ दिए ज्ञान मुद्रा बनिए, हाथों पर रखें।
0: जीभ को बाहर निकालिए और जीभ को दोनों तरफ मोड़ते हुए पक्षी के चोंच के आकार जीभ को बनाइए।
1: जीभ बाहर बेर करे दो पास दिए पाखी टोटेर मतो आकृति दिन
0: और जीभ से गहरा श्वास अंदर खींचिए और धीरे धीरे नाक से श्वास को छोड़िए। एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे जीभ से श्वास को अंदर की तरफ खींचिए और धीरे धीरे श्वास को नाक से बाहर की तरफ छोड़िए। यह अभ्यास मन में शांति को प्रदान करता है, चिंता तनाव अवसाद जैसे बीमारियों को नियंत्रित करता है। अगला अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम का करेंगे।
1: परवर्ती अभ्यास भ्रामरी प्राणायाम।
0: षण्मुखी मुद्रा धारण कीजिए, अंगूठे को कान को अंगूठे से कान को बंद कीजिए, सभी उंगलियों को चेहरे पर स्थापित करें।
1: वृद्धांगुली दिए कान एवं बाकी अंगुल दिए
0: नाक से श्वास अंदर लीजिए और धीरे धीरे श्वास बाहर छोड़ते हुए कंठ से भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न कीजिए।

एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। धीरे धीरे श्वास को अंदर लीजिए और श्वास को बाहर छोड़ते हुए भ्रमर जैसे ध्वनि को उत्पन्न करते हुए बाहर की तरफ छोड़िए।

दोनों हाथों को सामान्य स्थिति में लेके आइए, आंखें बंद रखे, इस भ्रामरी प्राणायाम से उत्पन्न हुए तरंगों को महसूस करने का प्रयास। यहां एक प्राणायाम चिंता अवसाद ऐसे अवस्था को नियंत्रित करता है, अनिद्रा जैसे शिकायतों को दूर करता है। अब हम ध्यान

नागरिकता को और नौसेना द्वारा राष्ट्रीय समुद्री हितों की रक्षा को अधिक सक्षम और प्रभावशाली बनाएंगे। मुझे पूरे विश्वास है कि इन जहाज़ों के अधिकारी और नौसैनिक अपने जहाज़ों का आत्मविश्वास और पूरे जज्बा के साथ संचालन करेंगे, पूरी निष्ठा से सेवा करेंगे, देश की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहेंगे।

0: আকাশবাণী কলকাতা গীতাঞ্জলি প্রচার তরঙ্গের অনুষ্ঠান শুনছেন মিডিয়াম ওয়েভে 456.6 মিটার অর্থাৎ 657 কিলোহার্টজে। একটু পরেই রাত 12টায় খবর দিল্লি কেন্দ্র থেকে।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं आशुतोष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि किसी भी देश की आर्थिक और सामरिक शक्ति उसके समुद्री सामर्थ्य पर काफी हद तक निर्भर करती है, इसलिए

0: भारत अपनी समुद्री क्षमताओं को लगातार मजबूत कर रहा है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह पर स्वदेश निर्मित 3 युद्धपोतों को भारतीय नौसेना में शामिल करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह बात कही। इनमें अत्याधुनिक स्टेल्थ फ्रिगेट INS दुनागिरी, संशोधक और अग्रय शामिल हैं।
1: भारत अपने पूरे मैरिटाइम इकोसिस्टम को सशक्त बना रहा है, इसलिए